0: जनता केबल पांच दशक देखी।
1: गजुरी नामक टीवीएस अपग्रेड हमने लाइफ भाग्य ने अपग्रेड होने अच्छा माइको डील गजुरी आदर्श चौक में आए रहते पहले जूनसू के ब्रांड को पुराना साधन एक्सचेंज करेगा ब्रांड न्यू टीवीएस सौदा पाउन होने से 10 लाख तक को कैश डिस्काउंट टीवीएस को स्पिन को चाबी अथवा 100% समय कैश बैक ये मात्र हुई ना हर एक दिन लकी ड्रॉ बाट दुई भाग्यशाली कस्टमर लाई 5 वर्ष समय फ्री सर्विस फटाफट फाइनेंस को सुविधा नागरिकता र लाइसेंस के भर में पुराना साधन में कतई नपाइने खतरे वैल्युएशन एउटा फ्री हेलमेट र टीवीएस लाइफटाइम वारेन्टी पनि पाउनुहुनेछ असोज 8 गतेदेखि 16 गतेसम्म गजुरी 1 आदर्श चौक प्रभु ब्याङ्क सँगै सम्पर्कका लागि विश्वराल मोटरसाइकल वर्कसप 9848562088 9023188917 एक्सचेन्ज गर्न आउँदा पुरानो साधनको ब्लुबुक साथै ल्याउन नभुल्नुहोला शर्तहरू लागू हुनेछन्।

गजुरी में आवाज सीबीएस को अपग्रेड हाने लाए भाग्य ने अपग्रेड बने अच्छा माइको डील गजुरी आदर्श थोक में आए रहता पहले जून्सु के ब्रांड को पुराना साधन एक्सचेंज करें रहा ब्रांड न्यू टीवीएस चौदह पाउंड होने था 10 लाख समय को कैश डिस्काउंट टीवीएस को सिम को चाबी अथवा 100% समय कैश बैक ये मात्र हुई ना हर एक दिन लकी ड्रॉ बाट दुई भाग्यशाली कस्टमर लाई 5 वर्ष समय फ्री सर्विस फटाफट फाइनेंस को सुविधा नागरिकता र लाइसेंस के भर में पुरानो साधन में कतई नपाइने खतरे वैल्युएशन एउटा फ्री हेलमेट र टीवीएस लाइफटाइम वारेन्टी पनि पाउनु हुनेछ असोज 8 गतेदेखि 16 गतेसम्म गजुरी 1 आदर्श चोक प्रभु ब्याङ्क सँगै सम्पर्कका लागि विश्वराल मोटरसाइकल वर्कसप 9848562088 9023188917 एक्सचेन्ज गर्न आउँदा पुरानो साधनको ब्लु बुक साथै ल्याउन नभुल्नु होला शर्तहरू लागू हुनेछन्

0: TBS 아이는 쌍만다호.
1: 왜 순나 걸스는 나보다 람보 모바일 기프트 좀 하네고 브랜드 모바일을 까 방사라이
2: 트리머티 차디 차니
1: 뭐나 요다 거리 아니 거마 레디오라 아마코 모바일 번이 번호사
2: 트리머티 차디 차니
1: 야 아플라이 사마세 보이 라고서 우마다 거르 봤어만에 번호치로
2: मजाक होइन भने मेरो सबै समस्याको समाधान गर्ने ठाउँ श्रीमूर्ति मोबाइल हाउस पो भनेको त लैले ओरिजिनल तथा ब्रान्डेड मोबाइल सस्तो मूल्यमा छानी छानी किन्नलाई श्रीमूर्ति मोबाइल हाउसतिर
3: हामी कहाँ सामसुङ ओप्पो भिभो सिजी इन्टेक्स एमआई मैजु कलर्स लाभा एमटेक टेक्नो आइटेल ब्रान्डका मोबाइलहरू घडी साउन्ड सिस्टम डिसोम पंखा तथा सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पाइनुका साथै पुरानो मोबाइल लिएर नयाँ मोबाइल पनि साटिन्छ
4: त्रिमूर्ति मोबाइल हाउस धादिङ बेसी मिलन टोल लेकाली टिकट काउन्टर सँगै प्रोप्राइटर ईश्वर श्रेष्ठ सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841063130 र 9813183307
5: रंगबहार रंगबहार
6: बजट संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियर
5: वर्ष पेन से घर रंगाउनु होस् लकी ड्रॉ मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
6: साथ ही 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ
5: बजट पेन
7: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज

0: जनता केवल पांच दशक देखी
1: गजुरी नामक टीवीएस को अपग्रेड हाने लाई भाग्य ने अपग्रेड हुने अचम्मै को डील गजुरी आदर्श चोक में आए तपाईले जुनसुकै ब्रांड को पुरानो साधन एक्सचेंज करे ब्रांड न्यू टीवीएस सर्दा पाउनु हुने छ 10 लाख सम्म को क्याश डिस्काउंट टीवीएस को सुन को चाबी अथवा 100% सम्म क्याश बैक यति मात्र होइन हरेक दिन लकी ड्र बाट दुई भाग्यशाली कस्टमर लाई 5 वर्ष सम्म फ्री सर्विस फटाफट फाइनेंस को सुविधा नागरिकता र लाइसेंस के भरमा पुरानो साधन मा कतै नपाइने खतरै डाली एउटा फ्री हेलमेट र टीवीएस लाइफ टाइम वारेन्टी पनि पाउनुहुनेछ असोज 8 गतेदेखि 16 गतेसम्म गजुरी 1 आदर्श चोक प्रभु ब्याङ्क सँगै सम्पर्कका लागि विश्वराल मोटरसाइकल वर्कसप 9848562088 9023 18917 एक्सचेन्ज गर्न आउँदा पुरानो साधनको ब्लु बुक साथै ल्याउन नभुल्नुहोला शर्तहरू लागू हुनेछन्

0: TBS 아이는 썩난다 호.
1: 왜, 순나, 걸프는 레오타 램브로 모바일 기프트 하네고, 브랜드 모바일 어디 가방살아?
2: 트리머티 찾으세요.
1: 뭐 레오타 거리, 아니 거마 라디오를 아마 그 모바일 번이 번호인가?
2: 트리머티 찾으세요.
1: 야, 아플레스 사무실 보이 라고서, 우마다 거리 봤어만에, 번호시로.
2: 모자 거인은 아니, 여러 소비 사무실과 상담하는 거는 이탕, 트리머티 모바일 아웃스포 번이거든. 러이래, 오리지널 또다 브랜드 모바일 소스토 물량만 산이 산이 끼는 날에 트리머티 모바일 아웃스티라.
3: हमी कहां Samsung, Oppo, Vivo, CG, Intex, MI, Meizu, Colors, Lava, Mtech, Tecno, ITIL brand का मोबाइल हरू, घड़ी, साउंड सिस्टम, डिसोम, पंखा तथा संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सामान हरू पाइनु का साथे पुरानो मोबाइल लिएर नया मोबाइल पनि साटिन्छ।
4: त्रिमूर्ति मोबाइल हाउस धादिङबेसी मिलनटोल लेकाली टिकट काउंटर संगई प्रोप्राइटर ईश्वर श्रेष्ठ संपर्क मोबाइल नंबर 9841063130 र 9813183307
5: रंग बहार
6: बजट संगे उपहार है उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
5: वर्जर पेंट से घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
6: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि घर रंगाउ खुशी बनाउ उपहार जित्ने अवसर पाउ
5: वर्जर पेंट
7: समुदाय का लागी समुदाय का आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज